नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

नमः। ओम श्री साई संसार दुख क्षय कराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः।